अल्लाह ये चाहता है कि हम वो लाइफ स्टाइल अपनाएं जो इलाही है। अल्लाह हम हर लम्हे ये सोचे कि हम क्या करें कि जो हमारे अल्लाह को पसंद आ जाए, यही कुर्बत है। अगर इंसान के जहन में ये बात बैठ जाए कि जिंदगी के हर लम्हे में इस बात की कोशिश करे कि अपने अल्लाह की पसंद और नापसंद का ख्याल रखे, तो बस यही कुर्बत होगा, यही अल्लाह की कुर्बत है। अलग से कोई बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है उसमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहां पे इंसान मसावात, इनके सारी कल्चरल एतबार से सबको एक एहराम में दूसरी चीजों में कोई फर्क नहीं है, यानी दुनिया के जितनी चीजें हैं, चाहे वो सामाजिक चीजें हों, चाहे रसूमात हों, चाहे खानदानी चीजें हों, चाहे वो कल्चर हो, सबको तोड़ के एक इलाही माहौल को पेश किया गया। और एक ऐसा कैंप लगाया गया कि जिसमें इंसान एक तूलानी मुद्दत तक अपने आप को उस इलाही माहौल में ढालने की कोशिश करे, ताकि जब वहां से आए तो अल्लाह का वाकई और खालिस बंदा बन के निकले। अब ये और बात है कि उस फलसफे को भुला देते हैं और वहां जाके भी वो नहीं हो पाते हैं कि जो अल्लाह चाहता है। इसीलिए कहा गया कि जब इंसान ज्यारत पे जाए तो जैसा गया वैसा ना आए, बदल क्या है। जब इंसान हज पे जाए तो जैसा गया है वैसा ना पलटे, ये दुआ करके जाए। पहले ही कदम यह है कि पालने वाले हमको ऐसा ना पलटाना, वरना फिर ये तो सिर्फ निगाहों की ज्यारत होगी, बस जाहिरी चीजें होंगी, हकीकत नहीं होगी। तो ये रवायत पे बात शुरू करनी थी, लेकिन बात यहाँ वक्त भी नहीं है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते से रवायत पे बात करेंगे, ज्यादा रवायतें नहीं है, कमी है, और जल्दी इसको ख़त्म करेंगे ताकि आगे के मौजूदात पे बात करें। तो हज जो आयात की रोशनी में जो गुफ्तगू हुई है, दरवाक़े हज वो चीज़ है कि जो इंसान को अल्लाह से करीब करती है। इसीलिए ये भी कहा गया कि हज दीन से कुर्बत के लिए, करीब होने के लिए, यानी जो दीन का सिस्टम है, जब इंसान हज करके आता है तो जो दीन का सिस्टम है इंसान उससे करीब हो जाता है, नज़दीक हो जाता है। और जब इंसान दीन से कुर्बत और दीन की तकवियत, दो अलग चीज़ें नहीं, अगर इंसान दीन से करीब होगा तो दीन खुद ब खुद कवी होगा। खुद दीन बनवाने सिस्टम कवी है, इसमें कोई शक नहीं, वो कमज़ोर नहीं है, उसके अंदर ये सलाहियत है कि सब पे गालिब आ जाए, कुरान की आयत है, ये बारह हम पेश भी कर चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ पे जो दीन की तकवियत है वो ये कि जो माशरे में, समाज में, अमली सूरत में दीन है ये कितना कवी है, हमारे अंदर दीन कितना कवी है। मिसाल के तौर पे पर्दा एक कवी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं, हमारे माशरे में पर्दे का कल्चर कितना कवी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। लिहाजा जब हम दीन पे अमल करेंगे और मुख्तलिफ जिहाद से उसको समझेंगे, फ़लसफे को समझेंगे, उसको अपनाएंगे, उससे करीब होंगे, तो जितना हम दीन से करीब होते जाएंगे उतना दीन हमारे माशरे में कवी होता जाएगा। दीन का कवी होना ऐसा नहीं है कि मसलन हम वैसे ही हो दीन, नहीं, दीन का कवी होने का मतलब ये कि हम कवी होंगे क्योंकि हमारा दीन है, हम उस पर अमल कर रहे हैं। इंसान जिस सिस्टम को फॉलो करता है उस सिस्टम की जो कुव्वत होती है जब फॉलो करता है तो उसके अंदर आ जाती है। अगर कुरान ने कहा है कि मसलन इसके अंदर ये सलाहियत है कि दूसरे अदियान पर गालिब आ जाए, तो कौन गालिब आएगा, जो उस पर अमल करेगा वो गालिब आएगा। ये इम्तियाज, ये इनाम अमल करने वालों को मिलेगा, ऐसा थोड़ी है कि अमल करने वाला अलग है और फिर वो एक अलग कोई चीज़ है कि जो गालिब आएगी। तो लिहाजा जितना इंसान दीन से करीब होगा उतना सही मानों में देखा जाए तो दीनदार कवी होगा, दीन कवी होगा। इज्तमाही तौर पर जैसे माशरे में कहा जाता है कि फलां कौम के लोग, फलां मजहब के लोग कवी हैं, फलां कौम के लोग, फलां मजहब के लोग कमज़ोर हैं, किस बुनियाद पर, या तो उनका सिस्टम कमज़ोर है या उस पर अमल कमज़ोर है। हमारा सिस्टम तो मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं, मुश्किल

हदीस में इमाम फरमाते हैं कलमतो ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमाए ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्न, ये अल्लाह की तरफ से हदीस कुर्सी, हमारा किला है। फमन दखल हिस्नी अमिन अमिन आजाबी, जो हमारे इस किले में दाखिल हो गया हमारे आजाब से महफूज है। यानी तौहीद, तौहीद मतलब क्या, हमारा सारा काम सिर्फ अल्लाह के लिए, ये तौहीद है। अगर हमने नमाज इसलिए पढ़ ली कि नमाज अल्लाह के लिए, अल्लाह ने कहा है, अल्लाह के हुक्म पे ही पढ़ रहे हैं, जो तरीका उसने बताया वही, लेकिन लोग भी नमाजी के, अब ये शिर्क है, शिर्क खफी है, शिर्क जली है, शिर्क खफी, इंसान मुसलमान ही रहेगा लेकिन शिर्क है। ऐसी इबादत जो बुनियादी है, जिससे इंसान की बंदगी साबित होती है, बहुत अहम इबादत है, वो भी अल्लाह के लिए नहीं रह जाती, हत्ता अल्लाह उसका अजर भी नहीं दे जाता, तुमने तो लोगों के लिए पढ़ी थी, शिर्क। हमारी जिंदगी के तौहीद यानी जिंदगी के सारे काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नहीं। मसला खुद तौहीद पे बात हुई और फिर होगी। यहाँ पे इमाम जब इस हदीस को बयान करते हैं, ये इतनी अहम बात है, पूरी जिंदगी के लिए बात है। आगे इमाम कहते हैं बेशुरूतहा, लेकिन इसमें शर्तें हैं, और फिर कहते हैं कि मैं उन शर्तों में से, यानी इमाम ये बताना चाहते हैं कि इमामत, लीडरशिप, ये शर्त है तौहीद तक पहुंचने के लिए। आदमी लीडरशिप को छोड़ के, मासूम इमाम को छोड़ के तौहीद तक नहीं पहुंच सकता, मुमकिन ही नहीं है कि तौहीद तक पहुंच जाए बगैर लीडरशिप के। जैसे अभी हमने शुरू में अर्ज किया आगाज में, बहुत सी जगह होती हैं कि जहां पे इंसान खुद नहीं फैसला कर पाता है, वहां पे कोई ऐसा हो बसीरत की जो फैसला करे और फैसला करके बताए। अब जाहिर सी बात है कि गैबत के मसाइल हैं, जब इमाम नहीं है तो कोई तो होगी जो हमें सबसे बेहतर हो, फिर उसके बाद वो हमको लीड करे और हमारी रहनुमाई करे। तो ऐसा नहीं कि गैबत में ये जिम्मेदारी हमारी खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं। अजाब से बचने के लिए तौहीद के किले में दाखिल होना है, तौहीद के किले तक पहुंचने के लिए लीडरशिप को एक्सेप्ट करना, ये उसकी शर्त है। यानी जिस आदमी ने लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं किया, इमामत को कबूल नहीं किया, उसका अजाब से बचना खतरे में। एक फिक्र है, एक बुनियादी चीज है, बेसिक चीज है कि जिसको इमाम ने इस हदीस के जरिए से पेश किया है, कि जो हमारे लिए बहुत बुनियादी और बेसिक चीज है, वो समझने की जरूरत है। जो ऐसी बातें हमने अर्ज किया और फिर कि असल ये मासूम इमाम के लिए, लेकिन जमाने गैबत में जो नियाबत और इमाम के नायबीन हैं, बहरहाल जब गैबत के मसाइल हैं तो फिर अलग मसाइल हैं, और उस एतबार से हमको देखना। दूसरी मुनासिबत इस हफ्ते की, अम्बिया में बाज अम्बिया की विलादत की तारीख है, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख है। जनाब इब्राहीम, जाहिर सी बात है कि जितने अम्बिया हैं सारे अम्बिया तौहीदी एतबार से परफेक्ट हैं, जो भी उन्होंने अंजाम दिया है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए अंजाम दिया है, ज़रा भी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। लेकिन जनाब इब्राहीम के बाज वाक़ियात ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा नुमाया है, जिससे हमको उस तौहीद इब्राहिमी को समझने, इब्राहिमी तौहीद मतलब कोई अलग तौहीद नहीं, वही इलाही तौहीद है जनाब इब्राहिम के जरिए से जो पहचानी गई है, उस तौहीद को समझने में आसानी है। आप देखें मसलन सिर्फ दो वाक्य को बनवाने में, दोनों मशहूर। इंसान कब तौहीद से हटता है? दवाके जब इंसान की पसंदीदा चीज छिनने लगती है, तो वहां पे फिर ईमान डगमगा जाता है, उमन ही होता है। अब हर आदमी के लिए अलग अलग बुत है, बुत जरूरी नहीं कि वो पत्थर और लकड़ी के ही, हर आदमी का अलग अलग बुत, हर वो चीज जो हमारे अल्लाह के बीच में है। किसी के लिए मसलन जो है वो दुनियादारी बुत होती है, किसी के लिए ओहदा बुत होता है, किसी के लिए वाहवाही बुत होती है, किसी के लिए दौलत, किसी के लिए मादियात, हत्ता किसी के लिए कोई खास चीज बुत हो जाती है, फला चीज बुत, खास रिश्ता बुत बन जाता है, फला रिश्ता बुत है, उसकी वजह से फिर वो छोड़ देता है। तौहीद यानी अल्लाह के हमारे बीच में कोई चीज ना हो,
اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی چیز

0: ठीक है वो तीन चार मुल्कों से उसकी फौज ज़्यादा होगी, लेकिन उसके हम फिक्र लोग पूरी दुनिया, जैसे अभी भी आप देखें जब ये सूरिया में इराक़ में दाइश का मसला उठा था और जिन्होंने वो तकफीरियत और यजीद यजीदियत वाले जो काम शुरू किए, तो पूरी दुनिया हत्ता मगरबी ममालिक से उनके हम फिक्र लोग आके, यानी ये जो है यूँ समझें कि ये महाज हैं, ना कि सिर्फ यहाँ के लोग ही होंगे, ये उनवान है महाज का, लेकिन इनके साथ इनके हम फिक्र लोग पूरी दुनिया से इकट्ठे होंगे। जैसे हम जब खुरासान की बात करते हैं तो हमारे जहनों में वो कदीम खुरासान आना चाहिए जिसके अंदर मौजूदा ईरान है, अफ़गानिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, हत्ता बलूचिस्तान, बहुत सारे इलाके हैं, कदीम हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाके हैं। या जब हम कदीम फ़ारस की बात करते हैं और फ़ारस रूम की बात करते हैं तो उस ज़माने का फ़ारस देखें ना कि उसके अंदर कितने ममालिक थे आज के, तो इससे पता चलता है कि वही बात है कि आखिर ज़माँ में अगर कोई नाम दिए गए हैं या तो उस कदीम ज़माने के मुताबिक दिए गए हैं कि उस कदीम ज़माने में ये सारे मुल्क इस नाम के साथ इकट्ठे थे,
1: ठीक है,
0: या फिर जो है इससे मुराद जो है कि ये जगह मरकज़ बनेंगी लेकिन इनके हम फिक्र लोग पूरी दुनिया से जमा होंगे।
1: हाँ, यानी खुलासा ये है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग इससे जो है वो मुस्तस्ना हो सकते हैं, नाज़रीन भी हमारे शामिल हैं, यानी पूरी जहाँ जहाँ जो है वो अहले हक हैं वो अहले खुरासान अहले यमन के साथ शामिल हैं।
0: दूसरी जो कौम है जिसे हम कहेंगे फ़ारस या हम कहेंगे ईरान या हम कहेंगे खुरासान या हम कहेंगे अहले मशरक, इन सब की रिवायत एक जैसी हैं। मैं इस हवाले से जो है आपकी खिदमत में दो रवायतों की तरफ इशारा करता हूँ। एक अहले सुन्नत के जो मस्तर हैं सुनन इब्ने माजा, वहाँ हज़रत अब्दुल्ला इब्ने हारस से जो है वो मरवी है कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि यखरुजु नासुन मिनल मशरक फयुवत्तेउना लिल महदी सुल्तानहु, कि मशरक से लोगों का एक ग्रोह जो है वो क़याम करेगा, खुरूज करेगा, और ये कौन लोग हैं जो इमाम महदी की हुकूमत के लिए राह हमवार करेंगे, यानी अहले मशरक के जितने भी क़याम हैं, चाहे ये मौजूदा क़याम या इसके बाद और भी होंगे, हो सकता है वो ईरान ना हो कोई और जगह हो, चूँकि हम किसी मिल्लत या कौम का बिलखसूस नाम इसलिए नहीं लेना चाहते कि फिर हम महदवियत की बहस से निकल जाएंगे। महदवियत की बहस जो है उसके अंदर जो नाम उन्होंने अहादीस में लिए हैं, मसलन अगर उन्होंने यमन का लिया तो हम यमन की हद तक महदूद हैं, अगर उन्होंने खुरासान का लिया तो हम उससे महदूद हैं, अगर उन्होंने जो है वो शामात से सूफियानी तो हम शामात की हद तक महदूद हैं। तो पता नहीं वहाँ तक पहुँचने से पहले कितने ही क़याम होंगे, हो सकता है मौजूदा जो क़याम है, मौजूदा जो महाज है आलमी, ये भी उसी एक सिलसिले की एक अहम कड़ी हो, लेकिन इसको फिलफोर रब्त दे देना या इसको बतौर अलामत ज़िक्र करना, इस पर हमारे पास कोई दलील नहीं है। अब आप देखें कि नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशरक में से एक ग्रोह जो है वो क़याम करेगा, अब वो क़याम मौजूदा क़याम है या इसके बाद एक क़याम है हमें नहीं मालूम, लेकिन इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि अहले मशरक में इस्तेदाद है ऐसे क़यामों की कि जो इमाम महदी की हुकूमत का राह हमवार करेंगे, ये हम इससे एक नतीजा जो है वो लेते हैं। या जिस तरह आप देखें कि इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम से बिहारुल अनवार में जो है जिल्द नंबर 57 में ये हदीस है, फरमाते हैं कि रजुलुन मिनकुम यदउन्नासा इलल हक, कि कुम में से एक शख्सियत उठेगी कि जो लोगों को जो है वो हक की दावत देंगे, कि यजता में ओ माओहू कौम उन, कि जिसके हमरा कौम होगी का ज़ुबरुल हदीद, कि जिनके जिनके कुलूब जिनके वजूद जो हैं वो फौलाद की मानद होंगे, और उन्हें जो है मासूम फरमाते हैं कि तेज़ आंधियाँ जो है वो उन्हें नहीं हिला सकेंगी। यानी अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक ज़माना है कि जिसमें अहले कुम ने जो है वो क़यादत करनी है, अब ये मौजूदा क़याम है या इससे पहले जो इनकलाब आया था वो था या नहीं, ये पेशरफ्त हो रही है, इसके बाद आइंदा एक बहुत बड़ा क़याम है कि जिसमें बिलाखर अहले कुम ने जो है पूरे अहले मशरक का जो है वो यूँ समझना है कि आप अहले मशरक की जो है वो रहबरी करनी है और एक बहुत बड़ा महाज तश्कील देना है शैतानों के मद्दे मुकाबल, दुनिया कुफर दुनिया जुल्म के मद्दे मुकाबल। तो हमें फिर भी इस बात का जो है वो ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी क़याम और जंग को बिलखसूस कहना कि ये रिवायत इस पे है, हो सकता है इस पे हो सकता है इसके अलावा किसी हो, लेकिन एक नतीजा हमने लेना है, नतीजा क्या है کہ جن کے اندر حق کو پانا اور حق

0: मर्द कम हो जाएंगे, 20 औरतों के लिए एक मर्द बचेगा, यानी इस हद तक है। और ये लेकिन इसके बावजूद ये शरारतों से बाज नहीं आएंगे। आखिर में इमाम महदी अलैहिस्सलाम की सिपा जो हैं वो इन ज़ालिम यहूदियों, अलबत्ता हमारी मुराद सारे यहूदी नहीं हैं, उनके अंदर भी ऐसे लोग हैं जो अहले हक हैं, जो इस वक्त भी मजलूमों के साथ खड़े हैं, मुराद वो ज़ालिम यहूदी, वो सहूनियस्त है कि जो बेपनाह जुल्म कर रही है। तो ये और इनके हमनवा कहते हैं एक वक्त ऐसा आने वाला है, ये अहादीस जो हैं शिया सुन्नी किताबों में है, कि एक बुरा वक्त इन पर यह भी आएगा कि पूरी दुनिया इनके खिलाफ हो जाएगी, हत्ता दुनिया के जमादात। कहते हैं अगर कोई यहूदी, कोई जालम यहूदी किसी पत्थर के अंदर भी अपने आप को छुपाएगा और उस पत्थर के पास से इमाम महदी अलैहिस्सलाम के अफवाज में से कोई नासर उनका गुजरेगा, तो वो पत्थर खुद पुकारेगा कि ऐ मोमिन, मेरे पेट में एक यहूदी है, एक जालिम छुपा हुआ है, और मुझे तू तोड़ इसे कत्ल कर, एक सिरनी फकतुल, मुझे तोड़ इसे कत्ल कर। तो इससे पता चलता है कि ये जो फितना दोबारा यहूदी, जैसे अभी भी हम देख रहे हैं, अब तो पूरी दुनिया तकरीबन इत्तफाक कर चुकी है कि फितने का मरकज ये है, और मुसलसल फितना अंगेजी कर रहे हैं, और जो लोग इनका साथ दे रहे हैं वो भी रुसवा हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, और मजीद जलील होंगे। और आपकी खिदमत में अर्ज करें, लेकिन ये कब शिकस्त खाएंगे? हतमी शिकस्त इमाम महदी अलैहिस्सलाम और उनकी सिपा के जरिए होगी, और उसी वक्त ही बैतुल मक़द्दस जो है दुनिया मुकम्मल उससे आज़ाद होता देखेगी, जहाँ बिलखर आलम इस्लाम और उनके मुजाहिदीन एक अजीम इलाही नमाज भी इमाम महदी अलैहिस्सलाम की इमामत में बपा करेंगे, जिसमें हज़रत ईसा जैसे नबी शिरकत करेंगे। लेकिन अर्ज खिदमत यह है कि ये लोग जो हैं अपनी फितना अंगेजियों से बाज आने वाले नहीं हैं। हाँ, इनके साथ जंगें हैं जिसमें मुमकिन है हार और शिकस्त जो है उसके जाविये बदलते रहें, लेकिन ये अपनी नाबूदी की तरफ बढ़ रहे हैं, हमसे ये कहें, और इनके हम नवा जो हैं वो अपनी जिल्लत की तरफ बढ़ रहे हैं, और इनका मुकाबला करने वाले जो हैं वो कामयाबियों की तरफ और सादतों की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी सादत ये होगी कि यही लोग इमाम मेहदी की सिपा से मुलहक होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं इस हवाले से एक रिवायत जो है आपकी खिदमत में बयान करूंगा, और आप ये है तो अहले मशरक के हवाले से, और आपको मालूम है कि मौजूदा जो क़याम है इसमें अहले मशरक ने गरब के मद्दे मुकाबल जो एक अजमत पैदा की है, बाज़ लोग इस रिवायत को पेश कर रहे हैं, और मैं भी इसी रिवायत को पेश करना चाहता हूँ कि ये रिवायत जो है ये बता रही है कि अहले मशरक की अजमत क्या है, लेकिन आया इससे मुराद मौजूदा क़याम है या नहीं वो एक अलहदा मसला है।
1: जो पांचवें इमाम अलैहिस्सलाम की रिवायत है,
0: जी जी,
1: कतला हम शहदा,
0: जी जी,
1: इसमें जो है वो कहा है कि अहले मशरक जो है वो अलम परचम जो है वो इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में लेके जाएंगे,
0: जी,
1: जो बहुत ज़्यादा इसे लोग जो है वो पेश कर रहे हैं।
0: देखें ये जो हदीस है ये किताबुल गैबा जो है नोमानी की, उसमें सफ़ा नंबर 273 पर है, और बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 52 में भी ये हदीस है। हदीस जो है इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से नकल हुई है। अब मैं उसका जो है मतन आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मासूम फरमाते हैं कि कअन्नी बेकौमिन कद खरजू बिल मशरक, मैं मशरक से जो है एक खरूज करने वाली कौम को देख रहा हूँ। अच्छा, यतलुबून अल हक, कि जो मुतालबा रखते हैं हक का,
1: अच्छा,
0: के फला ये उतौ ना हो, कि उनका हक उन्हें नहीं दिया जाता। सुम्मा या तलबून हो, फिर वो मुतालबा करेंगे कि फला ये उतौ ना हो,
1: फिर उन्हें नहीं दिया।
0: अब यहाँ हम कह सकते हैं कि हो सकता है इसका एक मिस्ताक मौजूदा जंग भी हो, चूँकि ये भी दो दफ़ा इसी मुतालबा हक पर जो है इनको जुल्म का निशाना बनाया गया, वो जो 12 रोज़ा जंग थी और मौजूदा भी, कि ये जंग करना नहीं चाहते थे, ये सिर्फ मुतालबा हक रखते थे। फ़ाइज़ा राउ जाले का, जब ये देखेंगे कि हमें तो हमारा हक नहीं मिल रहा बल्कि हमारे हक में जुल्म हो रहा है, तो मासूम फरमाते हैं कि वज़ा सयूफ़हुम अला अवातिकहिम, फिर ये अपनी तलवारें, अपना असला जो भी है, चाहे कि चूँकि उस ज़माने में बेहतरीन असला तलवार थी, तो मौला ने तलवार का जिक्र किया, लेकिन वाकई मुराद जो है वो ख़ुद तलवार नहीं है, मुराद यानी उनका मुसल्ला क़याम है, कि ये असला उठाएंगे और फ़यो तो ना माँ सालू, फिर दुनिया वाले जो हैं वो कहेंगे हम आपका हक आपको देते हैं, आप अब ना लड़ें हमसे, लेकिन फला यकबुलू ना हो, अब यह कबूल नहीं करेंगे। अब जो है हक व बातिल की एक जंग शुरू हो जाएगी, और ये कश्मकश जो है हक व बातिल की ये जारी रहेगी। हद

0: चाहे आपको बर्फ पर ही घिसट कर जाना पड़े, तो इससे बढ़कर अब क्या बात हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हमारी तरबियत का हिस्सा हैं और इस्लाम का अहले हक का उफक जो है वो बहुत ही रोशन है। और ये सिलसिला इंशाअल्लाह जिस तरह के इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का फरमान है, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर पर ही जाके इंशाअल्लाह ख़त्म होगा।
1: अगर बस एक दो बात और है, मैं बहुत जल्दी जल्दी, चूँकि ज़ाहरन मुझे लगता है कि वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन बात इतनी लतीफ़ और इतनी बेहतरीन है कि दिल चाह रहा है कि थोड़ी देर तक और गुफ्तगू हो। लेकिन बहुत अहम एक चीज़ है कि एक रिवायत बहुत तेज़ी से और शायद से मेरी नज़र से भी गुजरी है कि एक मशहूर आलिम दीन है, उन्होंने भी जो है वो इसे जिक्र किया कि अहले मशरिक की जानिब से, अहले मशरिक नहीं, मशरिक की जानिब से एक आग उठेगी, जिस ज़माने में ये आग उठे तो उस ज़माने में मोमिनीन की ज़िम्मेदारी है या लोगों की ज़िम्मेदारी, इस तरीके का वर्ड बयान कर रहे थे वो, कि उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने लिए अनाज और ग़िज़ा पानी वगैरह का इंतज़ाम कर ले।
0: जी जी,
1: तो वो कह रहे थे कि ये वही जंग है, इस किस्म की जंग है, और हम मोमिनीन से कहते हैं कि वो ऐसा करें कि मतलब कुछ चीज़ें जो है वो ख़राब ना होने वाली, या जो है वो अनाज को जमा कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि मुश्किलात में गिरफ्तार हो जाए। इस किस्म की रिवायत की क्या हैसियत है और लोगों की क्या जिम्मेदारी है?
0: देखें जी, ये जो रिवायत है मशरक से आग, बाज़ कहते हैं कि ये आग ईरान से होगी, फ़ारस से होगी, बाज़ कहते हैं आज़रबाईजान से, रिवायात हैं हमारे पास, लेकिन सारी जो हैं वो सनद के अतबार से मख्दूश हैं। अब फिर दूसरा जो मसला है कि आग से क्या मुराद है? आग से मुराद वाकयन आग है, आग से मुराद जंग है, आग से मुराद फितना है, इसमें उलमा की जो है वो बहस है। तो इसका जो नतीजा है वो ये है कि जब भी आप फितना फसाद देखें, जब भी आप कहीं ऐसा मौजू देखें कि जो तकलीफ़ दे हो, तो उसमें अपने वज़ाइफ़ अदा करें। हम यही ले सकते हैं, रह गई अनाज वाली बात तो हम इस किस्म की किसी रिवायत की तायद नहीं करेंगे, चूँकि ये रिवायत सनद के अतबार से तो सही है ही नहीं कि हम इस पर कोई बिना रख लें। लेकिन इससे वाज़े हो रहा है कि आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, फ़र्ज़ करो अगर ये रिवायत सही भी हों, तो उससे ज़्यादा ज़्यादा ये हो रहा है कि आप के पास अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उनको अहले हक के लिए ज़खीरा करें, अहले हक की मदद करें, मुराद ये होगा उसमें। अगर कोई फितना उठेगा, कोई जंग होगी, तो उससे मुराद ये है, ना कि ऐसे ही फजूल में अपने घरों में हम जो है वो अनाज के जो है वो ज़खीरे कर लें। तो इससे तो हो सकता है मुल्क के अंदर जो है वो ज़खीरा अंदोज़ी वाली सूरत हाल पैदा हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो शरण भी हराम है। तो वो ये होता है कि जब भी कोई इस तरह के मसाइल हों, तो हमारे पास जो अपने ज़खायर हैं, या उन अगर हमने जैसे भी आप देखें बहुत सारी जगहों पर मोकब लगे हुए हैं, वो इन चीज़ों को ज़खीरा करके भेज रहे हैं, उस मिल्लत के लिए कि जो मिल्लत परेशानियों का शिकार है, ना कि हम फजूल में अपने घरों में जो है वो नहीं। इस तरह की बातें जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। वही बातें जो मंतकी और माकूल हैं जो होती हैं कि जो मिल्लत बहरानों का शिकार है, मसाइल का शिकार है, उसकी मदद की जाए। अगर ज़खीरा किया जाए तो उनके लिए किया जाए, उनको कुछ भेजा जाए, ये एक अच्छा रवैया है और यही दुरुस्त है। इसके अलावा कुछ नहीं।
1: अच्छा, अब आखिरी, सबसे आखिरी बात है इसके बाद से कि आखिर ज़मान के सिलसिले से बहुत सी रवायात हैं।
0: जी जी,
1: जैसा कि एक रवायत आपने भी अभी पढ़ी थी कि उसमें जो है वो पैगंबर अकरम की रवायत थी, तो इस आखिर ज़मान की और भी जो मुतअद्दिद रवायात, उससे हम नतीजा क्या ले सकते हैं आज के हालात के?
0: जी जी, देखिए जी, आखिर ज़मां में जो कुछ अहादीस का अगर हम खुलासा निकालें शिया सुन्नी किताबों से, तो आखिर ज़मां जो है वो मुसलसल जंग और फितनों की जगह है। आखिर ज़मां के अंदर बेपना फितने उठेंगे और इन फितनों की इंतहा जो है वो सुफियानी वाला फितना जो है उस पर होगी। सुफियानी के फितने से पहले भी कई फितने उठेंगे, हत्ता कि कहा गया है कि मसलन बनी उमैया और बनी अब्बास का दौर शायद दोबारा आ जाए, यानी इस तरह के फितने पैदा होंगे जिस तरह उस दौर में पैदा हुए, उनके नाम से हुकूमतें बनना शुरू हों। अभी तो मशरक़ वस्ता की कई दफ़ा शक्ल बदलनी है। ख़ुद सुफियानी का जब खुरूज होगा कि जिसके बारे में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम अगर सुफियानी को देखो तो तुम गोया दुनिया के पलीद तरीन शख्स को देखो, उसने कई मुल्कों की सरहदें जो हैं वो चेंज कर देनी है, उसने एक बहुत बड़ा ब्लाक तश्कील देना है, शैतानी ब्लाक, और जिसके पीछे यहूदी होंगे और उसकी भरपूर मदद करेंगे। तो बिलाखर हम अब जिस दौर में दाखिल हो रहे हैं और हो चुके हैं, ये मुसलसल जंगों का दौर है, हमारी आजमाइश का दौर है, हक़ व बातिल की मुसलसल कशमकश है, मुख्तलिफ़ फितने पैदा होंगे, और مومنین کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ہم نے کتاب شریف غیبۃ النعمانی میں ایسی بھی احادیث دیکھی ہیں جس میں خود مومنین کے اندر فتنوں کا بھی ذکر ہے کہ مومنین میں دو قسم کے فتنے ہوں گے، ایک عقائدی فتنے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے گا، یعنی

0: अकायद हक्का से दूर किया जाएगा। जैसे अभी भी हम गुल्व की लहरें भी देखते हैं और नस्बियत भी देख रहे हैं आलम इस्लाम में, तकफीरियत भी देख रहे हैं। और दूसरी जो चीज़ है, मोमिनीन के दरमियान आपस में इख्तलाफ और हमदिली का ख़त्म होना और इफ्तराक, हत्ता के मासूम फरमाते हैं कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी कि एक दूसरे के मुँह पर थूकेंगे, एक दूसरे की तकफीर करेंगे, एक दूसरे को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। तो इन सब चीज़ों के अंदर अहले खैर का अपना किरदार है कि अहले खैर जो हैं वो सब्र व तहम्मुल के साथ जो हैं हमदिली की फ़ज़ा पैदा करेंगे, अमर बिल मारूफ करेंगे, नए मुनकर करेंगे, अहले बिदत से लड़ेंगे, फितनों फसाद का मुकाबला करेंगे। यानी फिर भी हम देखते हैं कि आखिर ज़मां में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले खैर को जो है वो बयान किया कि ये किस किस्म के हैं। बल्कि एक हदीस में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, फरमाते हैं कि मेरी उम्मत की मानद आखिर ज़मां में एक ऐसी उम्मत आएगी, यानी जो मेरे दौर के असहाब हैं इन्हीं की मानद, यानी जिनकी जजा जो है वो मेरे दौर के मुसलमानों के बराबर होगी। और बाज़ रिवायात में फरमाया कि उलाई का खैरुल बरिया, यानी सबसे बढ़कर उनकी जो है सिफात क्या होंगी। अब फरमाते हैं कि वो अहले जहाद हैं, फितना फसाद से जंग करेंगे, अहले बिदत से जंग करेंगे, और उनकी सिफत यह है कि अमर बिल मारूफ करने वाले हैं और नहीं अनिल मुनकर करने वाले। इस तरह और भी रिवायात है जिसमें फरमाया कि ये लोग अहले खैर हैं, तआवुन करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, मस्कीनों की ज़रूरतमंदों की मदद करने वाले होंगे, सखी होंगे, मुतवाज़े होंगे। और आपकी खिदमत में अर्ज करें इनकी अहम तरीन निशानियाँ जो हैं वो इनकी सदाकत होगी, इनके अंदर अमानतदारी होगी। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमने किस तरह की शक्ल लेनी है उम्मत इस्लामी जो वाकयान रसूलुल्लाह की उम्मत होगी और जिसका इंतज़ार हमारे मौला कर रहे हैं, उनके खदोखाल क्या हैं। वरना बेनाम इस्लाम तो अब तो बहुत कुछ हो रहा है, अब तो हक़ व बातिल जो है वो किसी दीन के साथ हम जोड़ ही नहीं सकते। जब हम देख रहे हैं कि इस्लाम बातिल के साथ भी खड़ा है और हक की तरफ भी इस्लाम है, अब तो दुनिया परेशान है, हमारे जवान परेशान हैं कि बस इस्लाम हकीकी कहाँ है। इस्लाम हकीकी जो है वो अब सिर्फ जो है वो फतवों की आड़ में नहीं है, अब वो हमारा किरदार में है, अमल में है कि हम आया हमारे अंदर सदाकत है, आया हम अमीन हैं, आया हम मजलूमों के हामी हैं या जालमों के पीछे खड़े हैं। अब यहीं से जो है वो इस्लाम जो है नज़र आ रहा है, आया हम फितने फैलाने वाले हैं या फितनों के मुकाबले में खड़े हैं, आया हम बिदतें फैलाने वाले हैं या बिदतों के मुकाबले में खड़े हैं। तो एक स्याह दौर है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले आखिर ज़मां का, कि जिसमें खूनरीज़ी, कत्लोगारत, जंगें, फितने, बिदतें सब कुछ होगा। लेकिन इसके अंदर एक नूरानी पहलू भी है, एक नूरानी पट्टी भी है, वो अकलियत है जिसे हम कहते हैं मुकद्दस अकलियत, कि जिन्होंने जो है वो अमर बिल मारूफ और नहीं मुनकर करना है, जिन्होंने बिदत से लड़ना है, जिन्होंने सखावत करनी है, जिन्होंने अहले खैर की मदद करनी है, जिन्होंने बातल से जंग करनी है, कि जिनकी एक निशानी मौला फरमाते हैं ये वो लोग होंगे कि जो दिन के अंदर शेरों की मानद काफ़रों से लड़ेंगे और रात को जो है ये राहबों की मानद अल्लाह की बारगाह में मनाजात करेंगे, शब जिंदादारी करेंगे। तो बिलाखर ये चीज़ें भी वाज़े हैं, वो अकलियत भी वाज़े है और अक्सरियत भी वाज़े है। आज मेरा नहीं ख्याल इस मौजूदा दौर में जो सोशल मीडिया की भी जो कैफियत है कि किसी शख्स के सामने हक़ व बातिल वाज़े ना हो रहा हो। हक़ व बातिल वाज़े है, अब कोई आमदन अपनी आंखें बंद कर ले
1: तो
0: अलग बात है। जी
1: बहुत शुक्रिया आगा। ये आखिर ज़मान की गुफ्तगू कुछ ऐसी गुफ्तगू है कि शायद अगर जो है वो इस पर और भी बात की जाए तो बेहतर होगा, ताकि लोगों के लिए जो है वो क्लियर हो। तो इंशाल्लाह अगर मुमकिन हुआ तो आखिर ज़मान के सिलसिले से मुकम्मल रिवायत जो आई है अगर एक दिन किसी दिन गुफ्तगू हुई तो इंशाल्लाह आगे जो है वो कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। यहीं पर अपने प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं। मोमिनीन यकीनन नाज़रीन की खिदमत में भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आखिर तक जो है वो प्रोग्राम को देखा। आगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर नाज़रीन और सामेईन से गुजारिश ये है कि जिस तरीके से आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उसी तरीके से इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर से एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। फी अमानिल्लाह।
2: अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज।